ना पाछी ता खासानी से ना पाछी ता खासानी से चीते गो पहाना खेला थो खेला जिगम।